0: promesses. Moins de machines qui parlent à notre place. Regardez ailleurs. Écoutez autrement. Comprendre ce qui change. Et surtout, ce qui reste humain. Moins de hype. Plus de monde. Anthropology Lab FM. Pensez l'intelligence artificielle depuis le monde réel.
1: ए एंथ्रोपोलॉजी लैब के इस विश्लेषणात्मक कार्यक्रम में हम एक बेहद गंभीर और सीधे विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है माइनेबल सेल्फ, यानी एक खदान के रूप में हमारा अपना वजूद। ये कोई भारी भरकम तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी पहचान के बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक मूल से जुड़ा हुआ मामला है। तो बिना देर किए सीधे अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। प्रख्यात मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पादुरई के माइनेबल सेल्फ का वास्तव में क्या अर्थ है? जरा सोचिए, जब एक इंसान के पूरे सामाजिक जीवन को प्रोफाइल, स्कोर और कैलकुलेबल यानी गणनीय प्रतिनिधित्वों में बदल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ असल में क्या होता है? एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, हम यहां एआई को कोई जादू या अपने आप चलने वाली शक्ति नहीं मान रहे, बल्कि हम उन सामाजिक, आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को देखेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को चला रही हैं। इस विचार तक पहुंचने का एक पूरा वैचारिक सफर रहा है। अप्पादुरई की अकादमिक यात्रा को देखें तो 1986 में उनकी एक प्रसिद्ध किताब आई थी, द सोशल लाइफ ऑफ थिंग्स। इसमें उन्होंने बताया था कि समाज में निर्जीव वस्तुएं कैसे घूमती हैं और कमोडिटी बनती हैं। फिर 2004 में उन्होंने कैपेसिटी टू एस्पायर यानी इंसान की आकांक्षा करने की क्षमता को सामाजिक रूप से निर्मित बताया। 2015 में बैंकिंग ऑन वर्ड्स के साथ यह विचार और भी गहरा हो गया और अब हम माइनेबल सेल्फ तक आ पहुंचे हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो प्रक्रिया कभी सिर्फ निर्जीव वस्तुओं पर लागू होती थी, अब इंसान खुद उस कमोडिटी की यात्रा का हिस्सा बन गया है।
2: अब यहां सेल्फ या स्व का मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार अप्पादुरई का मतलब किसी इंसान के भीतर छिपी हुई मनोवैज्ञानिक गहराई या सिर्फ पर्सनल डेटा से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने सामाजिक संबंधों से बना है। माइनेबल सेल्फ का असली मतलब उस सामाजिकता से है जिसे आसानी से कहानियों में ढाला जा सके, जिसे साफ साफ देखा जा सके और सबसे अहम बात, जिसकी बाकायदा गणना की जा सके।
3: इसी सिलसिले में बैंकिंग ऑन वर्ड्स से एक बहुत ही दिलचस्प शब्द निकल कर आता है, डिविजुअल। हम हमेशा से व्यक्ति को एक इंडिविजुअल यानी अविभाज्य इकाई मानते आए हैं जिसे बांटा ना जा सके, लेकिन इन आधुनिक प्रणालियों ने इंसान को डिविजुअल बना दिया है। इसका मतलब है टुकड़ों में बटा हुआ इंसान। व्यक्ति अब कोई एक संपूर्ण इकाई नहीं है, बल्कि वो क्रेडिट जोखिमों, स्वास्थ्य स्थितियों और अलग अलग गुणों के आधार पर पूरी तरह से विभाजित हो चुका है।
4: और ये विभाजन हमें एक बेहद चौंकाने वाले निष्कर्ष पर ले जाता है। अप्पादुरई बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज मी, यानी मुझ जैसा या मेरे जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये प्रणालियां इंसान को लोन लेने वाले, एक मरीज या एक खरीदार के रूप में अलग अलग ऑपरेशनल वर्जन्स में बांट देती हैं, तो उसके बाद कोई ऐसी अंतिम प्रक्रिया नहीं बचती जो इन सारे हिस्सों को वापस जोड़कर फिर से एक पूरा और सुसंगत इंसान बना सके।
5: यहीं से हम एल्गोरिदमिक सेल्फ के विचार से टकराते हैं। ये एक ऐसा स्व है जिसे लगातार बाइनरी यानी शून्य और एक में बदला जा रहा है, विरोधी युग्मों में व्यवस्थित किया जा रहा है और एक तार्किक गणनीय इकाई में तब्दील किया जा रहा है। अब यहां रुककर यह सोचना लाजमी है कि इंसानी भावनाओं का क्या होता है, अनुभव के उन हिस्सों का क्या होता है जिन्हें आसानी से नंबरों में नहीं बदला जा सकता। स्रोत इस बारे में कोई सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
6: खैर, अगर हम एक खदान बन चुके हैं तो इस अंतहीन माइनिंग या निष्कर्षण की सामग्री आखिर है क्या? ये कोई मासूम तकनीकी प्रक्रिया नहीं है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म बस लोगों को आपस में जोड़ रहे हों। ये पूरी तरह से एक आर्थिक संबंध है। हमारी दोस्ती, हमारा परिवार, हमारा प्यार, काम, सेहत, जोखिम, यहां तक कि हमारी आकांक्षाएं और कहानियां, यही सब इस माइनिंग का कच्चा माल हैं। जीवन की हर गुणात्मक विशेषता अब निष्कर्षण के लिए पूरी तरह तैयार है।
7: अब सवाल उठता है कि इस खदान के भीतर प्रवेश कैसे मिलता है। सच कहें तो हमारी कहानियां ही इस खदान का एक्सेस कोड हैं। हम जिस तरह खुद को प्रस्तुत करते हैं या अपना सेल्फ ब्रांडिंग करते हैं, वो अब सिर्फ हमारा

0: व्यक्तिगत मामला नहीं रहा। हमारी निजी कहानियां अब ऐसी सामग्री बन चुकी हैं जिन्हें एल्गोरिथम आसानी से अलग अलग श्रेणियों में बांट सकता है और जिनसे मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारी जिंदगी की कहानियां अब बाजार में घूमने वाली संपत्तियां बन गई हैं।
1: ये पूरी मशीनरी बड़े ही चक्रीय ढंग से काम करती है। इसका पहला कदम है जीवन की गुणात्मक विशेषताओं का निष्कर्षण करना। दूसरा कदम, उन्हें नंबरों, क्रेडिट स्कोर, प्रोफाइल और एक्चुअरियल कैलकुलेशंस यानी बीमांकिक गणनाओं में बदल देना। और तीसरा कदम, वे नंबर वापस हमारी जिंदगी में लौटते हैं, लेकिन इस बार ऐसे कठोर फैसलों के रूप में जो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख सकते हैं।
0: इसी पूरी व्यवस्था को डिजिटल पर्सनहुड का नाम दिया गया है। ये किसी इंसान की जिंदगी का वो आंशिक, काम चलाऊ और गणनीय संस्करण है जिसका उस इंसान की असली जिंदगी पर गहरा और वास्तविक प्रभाव पड़ता है। मजे की बात यह है कि इस डिजिटल संस्करण को असली इंसान की पूरी गहराई या जटिलता को दर्शाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस इतना ही काफी है कि यह तय कर सके कि किसी को लोन मिलेगा या नहीं, या भविष्य में उसके सामने कौन से अवसर आ सकते हैं।
1: अब जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तेजी से विकास हो रहा है जिसका लक्ष्य मशीनों को ज्यादा से ज्यादा इंसान जैसा बनाना है, लेकिन इसके ठीक समानांतर एक बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया भी चल रही है। इंसान वास्तव में खुद को मशीनों के लिए ज्यादा पठनीय या मशीन रीडेबल बनाना सीख रहा है। सही प्रॉम्प्ट्स लिखना, खुद को एल्गोरिदम के हिसाब से ढालना, ये सब जाने अनजाने में इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
0: यहां एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है, यह निष्कर्षण कभी भी समान रूप से नहीं होता। इस खदान का अपना एक अलग भूगोल है जो वर्ग, लिंग, भाषा और हमारे औपनिवेशिक इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे कई संस्थाओं और इंसानों का अदृश्य श्रम काम कर रहा होता है। कुछ खास तबकों को पहले निष्कर्षण योग्य बनाया जाता है, जबकि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाला जो बुनियादी ढांचा है वो हमेशा हमारी नजरों से ओझल रहता है।
1: और ठीक यहीं पर फेटिशिज्म का पुराना सिद्धांत एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आता है। आज एक क्रेडिट स्कोर या एल्गोरिदम से बनी कोई प्रोफाइल हमें व्यक्ति की स्वाभाविक या प्राकृतिक विशेषता लगने लगी है, लेकिन ये फेटिशिज्म उस पूरी सामाजिक मशीनरी, उस पसीने, उस अदृश्य श्रम और उन सभी संस्थाओं को छुपा देता है जिन्होंने वास्तव में उस स्कोर को पैदा किया है। वो स्कोर खुद को एक स्वायत्त सच्चाई की तरह पेश करता है, जबकि असलियत उसके पीछे छिपे श्रम और संबंधों में होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही ठोस सवाल सामने आता है, किसी इंसान को पूरी तरह से गणनीय बनाने के लिए आखिर इंसान होने का कौन सा हिस्सा पीछे छोड़ना पड़ता है? इस वैचारिक पहेली पर और गहराई से विचार करने के लिए AI थ्रोपोलॉजी लैब पर पूरी नोट पढ़ें। इसका वेब पता है aithropologylab.org/hi/notes/theselfasaminapadurai bilfeld। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बेहद ही आकर्षक और जटिल विरोधाभास पर बात होने वाली है। एक तरफ दुनिया के कुछ ऐसे समुदाय हैं जो पूरी तरह से भौतिक अलगाव में रहते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसकी पहुंच मानो हर जगह है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई समुदाय बाहरी दुनिया से संपर्क न रखने का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लेता है, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में उनके इस अधिकार का क्या होता है? आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया की वजह से जमीनी भौतिक सीमाएं चुनौती का सामना कर रही हैं।
1: चलिए सीधे इस सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये है उत्तर सेंटिनल द्वीप, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक ऐसा हिस्सा है जहां पहुंचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत सरकार यहां बहुत ही सख्त नीति अपनाती है, जिसे आंखें खोली हाथ दूर या आईज ऑन हैंड्स ऑफ कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है दूर से निगरानी करना ताकि कोई घुसपैठ ना हो, लेकिन उनके जीवन में बिल्कुल भी दखल ना देना। इस द्वीप और इसके चारों ओर के 5 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र को एक संरक्षित आदिवासी रिजर्व घोषित किया गया है। ये एक ऐसी सीमा है जिसे पार करने की मनाही है,
2: लेकिन तकनीक ने इस घुसपैठ का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। मार्च 2025 की एक घटना पर गौर करते हैं। माइखाइलो विक्टोरोविच पोलियाकोव नाम का एक व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दिलचस्प बात यह है कि वो अपने साथ कोई हथियार या बुरा इरादा लेकर नहीं गया था, बल्कि उसके पास सिर्फ एक गोप्रो कैमरा और एक डाइट कोक थी। एक घंटे बाद वो वापस लौट आया। उसने सेंटिनल समुदाय के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं किया, लेकिन उसने कुछ और बहुत कीमती चीज निकाल ली, वो थी तस्वीरें। 2 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि किसी समुदाय को छुए बिना भी उनकी सीमाओं का उल्लंघन करके कंटेंट निकाला जा सकता है।
0: तो ये घटना हमें हमारी चर्चा के पहले मुख्य आधार की ओर ले जाती है, देखना।
3: कैमरे के लेंस के जरिए किसी को देखना कभी भी सिर्फ एक साधारण कृत्य नहीं होता। इसमें एक तरह का शक्ति संतुलन या कहें कि असंतुलन छिपा होता है। इंसानों में हमेशा से आधुनिकता से दूर रहने वाले लोगों को देखने की एक गहरी जिज्ञासा रही है। इस अंतर को समझने के लिए उत्तर सेंटिनल की स्थिति की तुलना जारवा समुदाय से करना बहुत जरूरी है। जहां सेंटिनल लोग स्ट्रिक्ट अलगाव में सुरक्षित हैं, वहीं अंडमान में ही रहने वाले जारवा समुदाय का इतिहास बहुत ही दर्दनाक रहा है। अंडमान ट्रंक रोड बनने के बाद उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों की भीड़ लग गई। नतीजतन वहां ह्यूमन सफारी जैसी अमानवीय प्रथा शुरू हो गई, जहां पर्यटकों को ये लोग किसी चिड़ियाघर के आकर्षण की तरह दिखाए जाते थे।
4: और यहीं से हम दूसरे आधार पर आते हैं, किसी चीज को सामग्री यानी कंटेंट में बदलना।
1: जब जमीनी स्तर पर पाबंदियां लगीं और इन ह्यूमन सफारियों को रोकने की कोशिश की गई, तो क्या लोगों की वो देखने की इच्छा खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, उसने बस अपनी जगह बदल ली और वो डिजिटल दुनिया में आ गई। शोधकर्ता अमिताभ विक्रम द्विवेदी ने 2026 में इस बदलाव को एल्गोरिथमिक दृष्टि या एल्गोरिथमिक गेज का नाम दिया। उनके मुताबिक पुराने समय में कोई व्यक्ति बस जाकर देखता था, लेकिन आज एक पूरी डिजिटल मशीनरी काम कर रही है। पहले प्लेटफॉर्म ये दर्ज करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, फिर उनके एल्गोरिदम हमारी उस जिज्ञासा को और भड़काते हैं, और देखते ही देखते वो साधारण सी अमूर्त जिज्ञासा व्यवहारिक यात्रा मार्गों, GPS निर्देशांकों और वहां कैसे पहुंचे जैसे निर्देशों में बदल जाती है।
5: मानव शास्त्रियों ने इस डिजिटल घुसपैठ पर गहरी चिंता जताई है। ओरुबिटगक का मानना है कि कैमरा उठाना कोई तटस्थ काम नहीं है। यह देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच एक संबंध बना देता है, चाहे वो संबंध कितना भी एक तरफा क्यों ना हो। वहीं शोधकर्ता हिरई यह समझाते हैं कि कैसे बाहर से ली गई तस्वीरें वास्तव में उस स्थानीय संस्कृति को बाहरी दुनिया की उम्मीदों के सांचे में ढाल देती हैं। और वलडेरेस का तर्क तो और भी सीधा है। जब कैमरे से किसी की छवि बनाई जाती है, तो उसके लिए नैतिक सहमति का होना बेहद जरूरी है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो बनाने वाले की नहीं बल्कि उसे पब्लिश करने और उससे पैसे कमाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी है।
0: अब जरा एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। पूरे 4 करोड़! सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने पाया है कि यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इन अलगाव में रहने वाले समुदायों के वीडियो और तस्वीरों पर नजर रखने वाले अकाउंट्स के कुल फॉलोअर्स की संख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा डिजिटल ताक झांक के उस विशाल और डरावने पैमाने को सामने रखता है। हो सकता है कि इनमें से हर कोई वहां जाकर नियम न तोड़ना चाहता हो, लेकिन ये साफ दिखाता है कि ऐसी रहस्यमयी और अछूती सामग्री का बाजार कितना विशाल हो चुका है।
3: ये सब हमारी अटेंशन इकोनॉमी के एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले तर्क को जन्म देता है जिसे हम अगम्यता का मूल्य कह सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया में किसी समुदाय तक पहुंचना जितना मुश्किल होता है उसकी तस्वीरें उतनी ही ज्यादा एक्सक्लूसिव मानी जाती हैं। अगर कोई समुदाय साफ तौर पर बाहरी दुनिया से संपर्क करने से मना कर देता है तो डिजिटल दुनिया में उनकी कीमत और बढ़ जाती है। उन्हें लॉस्ट ट्राइब्स या जंगली जैसे सनसनीखेज शब्दों के साथ पेश किया जाता है। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से ही व्यूज बटोरने का खेल शुरू हो जाता है जो लाखों की कमाई में बदल जाता है।
0: अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम आधार की, बाहर बने रहने की संभावना।
3: तो सवाल ये है कि क्या इस विशाल डिजिटल जाल से पूरी तरह बाहर रहना आज के समय में मुमकिन है? एक समुदाय जो हमारी फोन स्क्रीन पर मौजूद नहीं है वो कोई खालीपन नहीं है जिसे जबरदस्ती डेटा से भरना जरूरी हो, वो उनका अपना स्वतंत्र चुनाव है। जनवरी 2026 में इस बात को बहुत बड़ी मान्यता मिली जब जकार्ता घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। इस दस्तावेज ने एक बहुत ही बुनियादी बात स्पष्ट कर दी, जब हम ऐसे संपर्क रहित समुदायों के मामले में सहमति शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं, उन्हें अकेला छोड़ देना। यह सिर्फ निजता का मामला नहीं है बल्कि बाहरी बीमारियों, हिंसा और अपनी जमीन से बेदखल होने से बचने की उनकी अपनी एक सोची समझी रणनीति है।
1: और यहीं से जन्म होता है एक बिल्कुल नई अवधारणा का, प्रकट न होने का अधिकार। हालांकि ये कोई स्थापित कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन ये उन पुराने भौतिक अधिकारों जैसे खुद फैसले लेने का अधिकार, अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहने का अधिकार और किसी से संपर्क न करने की इच्छा को आज की डिजिटल दुनिया की भाषा में अनुवाद करने का एक शक्तिशाली तरीका है। इसे एक ऐसी डिजिटल ढाल के रूप में देखा जा सकता है जो इन अछूते समुदायों को इस अंधाधुंध डेटा लूटने वाले युग से बचाती है।
6: इसे गहराई से समझने के लिए भूल जाने के अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन से इसकी तुलना करना सही रहेगा। भूल जाने का अधिकार तब लागू होता है जब कोई जानकारी पहले ही इंटरनेट पर आ चुकी हो और अब उससे हटाने की मांग की जा रही हो, लेकिन ये जो प्रकट न होने का अधिकार है ये तो बुनियाद पर ही प्रहार करता है। ये उस पूरे सिस्टम से सवाल पूछता है कि क्या आपको पहली बार में ही वो तस्वीर लेने या वो डेटा कैप्चर करने का कोई अधिकार था भी? ये डेटा मिटाने की नहीं बल्कि डेटा न बनने देने की लड़ाई है।
1: और अंत में हमारी चर्चा का निष्कर्ष, कमजोर पड़ती सीमाएं।
6: हमारी आधुनिक तकनीक हर चीज का नक्शा बनाना चाहती है, हर रहस्य को डेटा में बदलना चाहती है। ऐसे में अलगाव में रहने वाले ये समुदाय हमारे सामने एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करते हैं। जरा याद कीजिए, पोलियाकोव उस द्वीप पर सोना लूटने नहीं गया था, वो सिर्फ एक गोप्रो कैमरा लेकर गया था। जमीनी स्तर पर भौतिक सीमाओं का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि यदि डिजिटल अवसंरचना सीमा पार करना सिखाती है तो सुरक्षा की सीमा स्वयं कमजोर पड़ जाती है। जब हमारे एल्गोरिदम महज जिज्ञासा को यात्रा के निर्देशों में बदल देते हैं तो हम अनजाने में ही उस अलगाव को हमेशा के लिए खतरे में डाल देते हैं। इस विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है।
7: Ideas, culturas y tecnologías para pensar la inteligencia artificial desde la vida social. Estás en Agitrapula Shilab, me fende, y seguimos pensando.

0: AI Anthropology Lab gave व्यापक कंटेंट इकोसिस्टम के इस नए और बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गंभीर विषय की गहराई में जाने वाले हैं। आज चर्चा का केंद्र है एक शानदार लेख जिसका शीर्षक है खुला होना साझा होना नहीं है।
1: बिल्कुल, और देखिए विषय सुनने में जितना सीधा लगता है इसके मायने उतने ही गहरे हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल्पना कीजिए सितंबर 2026 की और दृश्य है नई दिल्ली में चल रहा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ग्लोबल साउथ में ओपन एआई को लेकर वहां जो कुछ भी हुआ उसने वैश्विक भू राजनीति की पूरी बिसात को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है।
0: इस पूरे एक्सप्लेनर का जो मूल आधार है वो इस एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिका है, खुला होना साझा होना नहीं है और साझा होना जरूरी नहीं कि संप्रभुता हो।
2: एकदम सही कहा। ये एक ऐसा वाक्य है जो तकनीकी दुनिया के एक बहुत बड़े और पुराने भ्रम को सीधे चुनौती देता है। असल में जब भी किसी तकनीक पर ओपन का ठप्पा लग जाता है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि भाई इस पर तो सबका समान अधिकार है, लेकिन जब बात बड़े स्तर पर यानी जियोपॉलिटिक्स की होती है तो इस ओपन एआई का असल मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले खंड की ओर, ब्रिक्स 2026 प्रस्ताव और वास्तविकता। नई दिल्ली के उस मंच पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिले। एक तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बहुत ही विशिष्ट प्रस्ताव था। उन्होंने ग्लोबल साउथ की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक साझा ओपन एआई इकोसिस्टम का प्रस्ताव रखा। ध्यान दीजिए, ये महज कोई ऊपरी विचार नहीं था बल्कि एक पूरी वास्तुकला या आर्किटेक्चर खड़ा करने की बात थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र की जो जमीनी हकीकत सामने आई वो कहीं अधिक सतर्क और नपीतुली थी। ब्रिक्स गठबंधन ने इस ओपन जोन वाले बड़े आर्किटेक्चर को एक साझा परियोजना के रूप में नहीं अपनाया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एआई संसाधनों को सुरक्षित, सुलभ और समावेशी बनाने की एक बहुत ही सामान्य सी दिशा पर सहमति जताई। यानी एक तरफ तो पूरा बना बनाया ढांचा देने की पेशकश थी, लेकिन गठबंधन ने काफी सूझबूझ के साथ फिलहाल केवल एक दिशा चुनना ही बेहतर समझा। अब आते हैं दूसरे खंड पर, खुलापन बनाम साझा क्षमता।
3: देखिए, एआई की दुनिया में ओपन सोर्स और ओपन वेट्स के बीच का जो बुनियादी फर्क है ना, उसे समझना इस पूरी चर्चा की जान है। ओपन सोर्स इनिशिएटिव की परिभाषा बिल्कुल साफ है। किसी एआई को सच में खुला तभी माना जाएगा जब उसका कोड, जिस डेटा पर उसे ट्रेन किया गया है, वो डेटा और उसके वेट्स, ये सब कुछ पूरी तरह से उपलब्ध हो ताकि कोई भी उसे समझ सके, उसमें बदलाव कर सके। और दूसरी तरफ है ये ओपन वेट्स का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि मॉडल के पैरामीटर्स तो सार्वजनिक कर दिए गए हैं, अब कोई भी इस मॉडल को डाउनलोड तो कर ही सकता है, लेकिन पेच ये है कि इसे चलाने के लिए बाहरी हार्डवेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। तो लब्बुलुआब ये है कि किसी मॉडल को डाउनलोड करने की एक्सेस मिल जाना उस मॉडल को स्वतंत्र रूप से बनाने या चलाने की क्षमता मिल जाने के बराबर बिल्कुल नहीं है।
0: जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 104 बिलियन। ये मूनशॉट के किमी K3 मॉडल के पैरामीटर्स की विशाल संख्या है। अब तकनीकी रूप से देखें तो ये मॉडल डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, कोई भी इसे हासिल कर सकता है।
4: जी हाँ, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। इतने भारी भरकम मॉडल को वास्तव में बड़े पैमाने पर चलाने के लिए कम से कम 64 एक्सीलरेटर या कहें कि अत्यंत महंगे और दुर्लभ हार्डवेयर की जरूरत होती है। तो बात वहीं आ जाती है कि भले ही मॉडल कागजों पर ओपन है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की जो असली भौतिक क्षमता है वो आज भी दुनिया के कुछ गिने चुने हिस्सों में ही सिमटी हुई है।
0: इसी बात से हम अपने तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, एआई की भौतिक अवसंरचना। इस भौतिक वास्तविकता को थोड़ी और गहराई से समझने के लिए हम स्टार और रू लेडर के एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत का सहारा ले सकते हैं। उनका साफ मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल तारों का जाल, सर्वर या कुछ भौतिक वस्तुएं भर नहीं है।
5: बिल्कुल सही, ये असल में संबंध परक व्यवस्थाओं, मानकों और पूरे के पूरे समुदायों में गहराई से गुंथा हुआ एक नेटवर्क है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो चीज एक विकसित देश के लिए बिल्कुल अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सुचारू रूप से काम कर रही है, वही चीज किसी विकासशील देश के लिए आवश्यकताओं, निर्भरताओं और दुर्गम बाधाओं की एक बहुत बड़ी दीवार बन सकती है।
0: और जब हम इन भौतिक सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि कंप्यूट पावर, माइक्रोचिप्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर, सुचारू बिजली की ग्रिड, भाषाई संसाधन और जाहिर है तकनीकी ज्ञान।
6: जरा सोचिए, एक बहुत ही बेहतरीन ओपन मॉडल डाउनलोड कर भी लिया, लेकिन वो तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक उसे चलाने के लिए 24 घंटे बिजली ना हो, इंपोर्ट किए गए एडवांस चिप्स ना हो और डेटा को प्रोसेस करने वाले लोकल डेटा सेंटर मौजूद ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर का कोड नहीं है, बल्कि यह पूरी की पूरी भौतिक और संस्थागत सप्लाई चेन है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये क्षमता सिर्फ ओपन वेट्स दे देने से कभी भी अपने आप ट्रांसफर नहीं हो जाती।
0: अब रुख करते हैं चौथे खंड की ओर, भारत और चीन का समीकरण।
3: यहाँ ग्लोबल साउथ के अंदर ही संस्थागत प्रतिस्पर्धा और सहयोग का एक बहुत ही जटिल ताना बाना मौजूद है। एक तरफ अगर हम देखें तो चीन की WAICO यानी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहल है, जिसकी शुरुआत शंघाई से हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ भारत की अपनी बिल्कुल अलग और विशिष्ट नीतियां हैं, जैसे कि नई दिल्ली का AI इम्पैक्ट समिट और आत्मनिर्भर भारत के तहत तकनीकी स्वायत्तता की नीतियां। दिलचस्प बात क्या है पता है? भारत वाइको के संस्थापक देशों की सूची में नहीं है। ये इस बात का एक बड़ा संकेत है कि भारत ब्रिक्स का उपयोग एक बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर दुनिया बनाने की अपनी व्यापक रणनीति के तहत कर रहा है। वो अपनी तकनीकी प्रगति के लिए केवल ब्रिक्स या चीन के बनाए ढांचों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो यहाँ हमें संस्थागत जगों पर सहयोग का ओवरलैप भी दिखता है और एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक दूरी भी।
0: यह हमें पांचवें खंड पर लाता है, डेटा सेट में संस्कृति और ज्ञान। देखिए, ब्रिक्स घोषणा पत्र में एक अत्यंत गंभीर जोखिम की तरफ इशारा किया गया है, और वो है AI डेटा सेट में सांस्कृतिक ज्ञान और विरासत का गलत प्रतिनिधित्व या उसका दुरुपयोग होना। ये बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि संप्रभुता का मतलब सिर्फ ये गिनना नहीं है कि किसी देश में कितने चिप्स हैं या कितने बड़े डेटा सेंटर्स हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो AI सिस्टम असल में जानता क्या है, वो किसी राष्ट्र की संस्कृति को कैसे दिखा रहा है, और क्या वो ग्लोबल साउथ के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान को पूरी तरह से अनदेखा तो नहीं कर रहा। अगर इन AI प्रणालियों के ज्ञान और प्रतिनिधित्व पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो सच मानिए ये भी एक प्रकार की तकनीकी गुलामी या अधीनता ही है।
3: और अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और छठे खंड पर पहुंच गए हैं, तकनीकी संप्रभुता और बाहर निकलने यानी एग्जिट का विकल्प।
0: तो अब तक की चर्चा के बाद ये बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है, अगर सच्ची तकनीकी संप्रभुता केवल ओपन मॉडल तक पहुंच या एक्सेस होने तक सीमित नहीं है, तो फिर असल में वह है क्या? ये सवाल पूरे लेख का सार समेटे हुए हैं। वास्तविक स्वायत्तता का मतलब है एक ऐसी संस्थागत शक्ति होना जिसके जरिए आप AI सिस्टम को अपनी शर्तों पर ऑडिट कर सकें, उसे स्थानीय स्तर पर होस्ट कर सकें और अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे रेगुलेट कर सकें। किसी चीज का महज इस्तेमाल कर पाना स्वायत्तता नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर पाना स्वायत्तता है।
3: जो हमें इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष की ओर ले जाता है। एक बार इस कोट को ध्यान से सुनिए। संप्रभुता किसी अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ सकने की शक्ति है बिना उस पर निर्मित सब कुछ खोए।
4: क्या कमाल का विचार है! ये इस बात का एक बहुत ही गहरा उदाहरण है कि महज पहुंच होना ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची संप्रभुता तब होती है जब ये चुनने की पूरी आजादी हो कि किसी तकनीक या नेटवर्क से कब बाहर निकला जा सकता है, और वो भी अपना सारा डेटा सिस्टम और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए।
3: बिल्कुल। तो अंत में यह समझना बेहद जरूरी है कि खुला होना अपने आप में साझा होना नहीं है, और महज साझा होना अपने आप तकनीकी संप्रभुता की गारंटी नहीं देता। असली ताकत उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने, उस पर अपना स्थानीय नियंत्रण रखने, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जरूरत पड़े तो बिना डरे उससे बाहर निकल पाने की क्षमता में है। क्या हम वाकई आज की तारीख में इतने स्वतंत्र हैं? इसी शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल के साथ AI एंथ्रोपोलॉजी लैब के इस गहन विश्लेषण पर हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं संपन्न होता है। ज्ञान, तकनीक और पावर के इस जटिल समीकरण पर विचार करते रहिए।
7: एंथ्रोपोलॉजी लैब FM कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी e इंटेलिजेंसिया आर्टिफिशियल। Seguimos pensando.
8: Anthropology Lab. FM abre un espacio para compartir voces, investigaciones y materiales que circulan en redes de conocimiento abierto. Un lugar para escuchar, reconocer y amplificar trabajos de otras comunidades, proyectos e instituciones. Anthropology Lab. FM. Voces compartidas. Conocimiento que circula, se conecta y se transforma.